0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: हाउ कैन लव बी कल्टिवेटेड इट कैन बी डन थ्रू टू मेथड्स वन ऑलवेज कंसिडर द फॉल्ट्स ऑफ अदर्स हाउएवर बिग टू बी इनसिग्निफिकेंट एंड नेग्लिजिबल कंसिडर योर ओन फॉल्ट्स हाउएवर इनसिग्निफिकेंट एंड नेग्लिजिबल एज बिग एंड फील सैड एंड रिपेंटेंट By these means, you acquire the qualities of brotherliness and forbearance. 2. Whatever you do, whether alone or with others, do it remembering that God is omnipresent. He sees, hears, and knows everything. Whatever you do, discriminate between right and wrong, and do only what is right. Endeavor at every moment to be aware of the omnipotence of God.

धरती बने चाहे आसमान, हम सदा तेरे साथ रहेंगे प्यार की नगरी में सदा। ओम श्री साई राम। टू दैट अल्टीमेट कंपेनियन हु इज लाइक एन ऑयस्टर टू अ पर्ल, शैडो टू अ बॉडी, क्लाउड टू द रेन एंड फ्रेग्रेंस टू अ फ्लावर, वी द यूथ ऑफ कर्नाटका have assembled here today to reiterate our everlasting companionship in the form of this humble musical offering titled Hum Tere Hai Sai. Dear Lord, neither the sun nor the rain could lay an obstacle in our path to reach here. To that Gananayaka, that Vigna Vinashaka, we offer our first rendition for this evening, Sharano Siddhi Vinayaka.

0: अब घर चलें।
1: एक मिनट बेटा, अभी चलते हैं।
2: बाबू भैया, अल्लाह के नाम पे भैया, अल्लाह मोहताज के भैया।
1: बेटा एक मिनट रुक जाइए, फकीर को पैसा दे दें।
2: अल्लाह भला करे, अल्लाह बच्चे खुश रहे।
3: दादा जान, क्या इस्लाम में गरीबों की मदद करना भी एक फर्ज है?
4: हाँ बेटा बिल्कुल है, गरीबों और दीन दुखियों की मदद करना इस्लाम में बड़े सवाब का काम माना गया है, इसीलिए हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़कात देना फर्ज है।
1: समझ गए बेटा?
3: हाँ।
1: अब चले?
3: हाँ चलिए।
5: द मंथ ऑफ रमजान इज कंसिडर्ड होली बाय मुस्लिम्स। इट वॉज एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इन द 7th सेंचुरी दैट प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, डिक्लेयर्ड द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह टू मैनकाइंड। The Holy Quran had also been written in this month. To express their gratitude to Allah, Muslims all over the world remained without food or water from sunrise to sunset for 30 days.
6: Mubarak ho, Mubarak ho! Ramzan ka chand nikal aya.
1: Abbu, Mubarak ho.
7: Mubarak ho, aapko bhi Mubarak ho. Chalo bhai, inshallah kal se roze shuru.
8: मैं भी रोजे रखूंगा दादा जान।
7: हाँ हाँ बेटा बिल्कुल रखिए।
8: लेकिन तुम्हारी तो अभी रोजे कुशाही नहीं हुई।
7: तो क्या हुआ रहीम मियाँ, आप रोजा रखिए, रोजे कुशाही तो अपने आप हो जाएगी।

0: उठो बेटा, रहीम करीम। अरे बेटा उठ जाओ जल्दी से, सरी का वक्त हो गया है। उठो बेटा, वक्त बहुत तंग है, उठ जाओ।
1: उठ तो गए हैं अम्मी।
0: हाँ शाबाश,
2: वक्त हो गया।
1: अम्मी जान, सरी खाने के बाद दिन भर कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा?
0: नहीं बेटा, रोजे में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते, शाम को अफ्तार के वक्त ही रोजा खोलकर खाया पिया जाता है।
1: रोजे क्यों रखे जाते हैं दादी जान?
3: बेटा, इसी महीने में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम दुनिया के सामने पेश किया। इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान साल में एक महीने रोजे रखते हैं और अपने रब की खुशनुदी हासिल करते हैं।
4: और बेटे, रोजा रखने से इंसान की सेहत भी ठीक हो जाती है, दिल और दिमाग से बुरे ख्याल दूर हो जाते हैं और रूह साफ और पाक हो जाती है।
5: हजरत, सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं।
0: बेटा जल्दी करिए, देखिए सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करिए बेटा।
6: बेटा जल्दी करिए,
0: 2 मिनट बचे हैं। पानी पीजिए जल्दी से।
1: जी अम्मी,
0: पानी पीजिए जल्दी से फटाफट।
4: हाँ भाई, आप लोगों ने सहरी कर ली?
6: जी।
4: चलिए अब हम लोग रोजे की नियत करते हैं।
0: जी।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
4: बिस्सौमिगदिन,
7: नवायतो,
4: लिल्लाह ताला,
7: लिल्लाह ताला,
4: मिन शहर रमजान। अब हम लोगों की रोजे की नियत हो गई, अब हम लोग चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने।
6: जी चलिए।
8: द न्यू मून इज साइटेड, द फेस्टिवल ऑफ ईद सिग्निफाइज द एंड ऑफ द मंथ ऑफ प्रेयर्स एंड फास्टिंग। Muslims all over the world greet each other with love and joy. It is time for feasting and celebration.
1: Mubarak ho, Mubarak ho, Eid ka chand ho gaya, Eid ka chand ho gaya.
0: Mubarak ho, Mubarak ho. अम्मी जान, आपको बहुत बहुत मुबारक,
9: बहुत बहुत मुबारक हो।
6: अम्मी जान चांद मुबारक हो।
0: मुबारक हो बेटा।
6: अबू जान आपको भी मुबारक हो।
5: मुबारक हो, मुबारक हो भाई।
8: अबू जान और फादर कीप्स हिज वर्ड। द एंटायर फैमिली ट्रेवल्स टू द होली सिटी ऑफ मक्का इन सऊदी अरेबिया फॉर हज। इस्लाम प्रोक्लेम्स दैट एवरी पायस मुस्लिम हु हैज द मीन्स टू डू सो मस्ट मेक अ पिलग्रिमेज टू द होली सिटी ऑफ मक्का एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम।
10: इस्लाम का 5वां खास रुक्न है हज। हर साहिब हैसियत मुसलमान पर हज फर्ज है। हज के लिए पूरी दुनिया से मुसलमान मक्का में जमा होते हैं। इस साल रहीम और करीम के वालिद, वालिदा, दादा जान और दादी जान भी हज करने मक्के मुअज्जमा तशरीफ लाए हैं। हज के दौरान सफेद कपड़े बगैर सिले हुए पहने जाते हैं, जिन्हें एहराम कहते हैं, जो हर हाजी को पहनना लाजमी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, छोटा हो या बड़ा। इस लिबास में सब एक से दिखते हैं। ऊंच नीच की सारी दीवारें यहाँ खत्म हो जाती हैं। हज के दौरान काबा शरीफ का तवाफ किया जाता है।
11: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
12: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
11: इन्नल हम्द।
10: मुकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज अदा की जाती है।
11: ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
12: लब्बैक अल्लाहुम्मा।
10: जमजम का पानी पिया जाता है।
11: शरीक लक लब्बैक,
12: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
11: इन्नल हम्द,
12: इन्नल हम्द,
11: वन निअमत,
12: वन निअमत।
10: सफा और मरवा की पहाड़ियों की सही की जाती है। मिना के मैदान जाते हैं, अरफात की पहाड़ी पर दुआ मांगते हैं और फिर मिना वापस आकर शैतान को कंकड़ी मारते हैं।
11: इन्नल हम्द,
12: इन्नल हम्द,
11: वन निअमत,
12: वन निअमत,
11: लकवल मुल्क,
12: लकवल मुल्क,
11: ला शरीक लक।
10: फिर कुर्बानी करके सर मुंडवाते हैं।
11: اللهم لبيك
12: لبيك اللهم لبيك
11: لبيك لا شريك لك
12: لبيك لا شريك لك.
10: اس طرح حج مکمل ہوتا ہے اور ایک مسلمان گناہوں سے پاک ہو کر ایمان کی صورت میں واپس اپنے اپنے ملک پہنچتا ہے. یہی ہے اسلام مذہب جس کے نور نے آج سے 1500 سال پہلے تاریخ دنیا کو منور کیا تھا, اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی یہ اپنی روشنی سے سارے عالم کو جگمگاتا رہے گا.

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रह सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरे ना एक काजा भज्यो नारग पत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत

सबै जगई ऊपर माहे लिखे परम ज्ञानी, कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भक्त जय जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा, हम हर बिने और ना देखा। नैन रहे रंग लाई या बेगल कहन ना जाई, हमरा परम गया पौ पागा जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमा से आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवाया केला। कथनी कह परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जा कहो गुरमुख आप बुझाई, ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जा के निगम दूध के ठाटा, समुद बिलोबन कौ माटा। ताकि हो बिलोबन हारी, क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना कर सपतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी। तू अजो ना चेत सचेरी, तू जम बपरी है हेरी। प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी। सोई सोई जागी, जितलाई तितलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई। सो रस कबीर है जानिया, मेरो गुर प्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई। सद जीवन भलो कहां ही, मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया। जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहजाना चूका। जो जीवन मरना जाने, सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़ी है क्या गुनिया, क्या वेद पुराना सुनिया। पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लही है। बस्ता गोचर पाई, कट दीप कर समाई। कह कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मन मानिया। मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहां बिलोब सपानी। काया मांजस कौन गुना, जो कट पीतर है मलना रहाओ। लौकी अड़सर तीर्थ नाई, कौरा पंतउ ना जाई। कह कबीर बिचारी, पवसागर तार मुरारी। सोरठ एको अंकार सतगुर प्रसाद, बहु प्रपंच कर पर तन लियावै। सुधारा बयान लुटावै, मन मेरे कूले कपट ना कीजै। अंतन बेरा तेरे जी पहली जय रहाओ। छिन छिन तन छीजै, जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जपै सवेरा। संत हो मन पवने सुख बनया, कि जोग प्राप्त गनया रहाओ। गुर दिखलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी आले अनहद बाजे। कुंभ कमल जल भरिया, जल मेटिया उबा करिया। कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया। राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै, जय माला अपनी लीजै।
ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸੰਤਨ ਰੇਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕਾ ਦੇਨਾ, ਮਾਧੋ ਕੈਸੀ ਬਨੈ ਤੁਮ ਸੰਗੇ, ਆਪ ਨਾ ਦੇਹੋ ਤਾਂ ਲੇਵੋ ਮੰਗੇ ਰਹਾਓ, ਦੋਏ ਸੇਰ ਮਾਂਗੋ ਚੂਨਾ, ਪਾਓ ਕੀ ਹੋ ਸੰਗ ਲੂਨਾ, ਅੱਧ ਸੇਰ ਮਾਂਗੋ ਦਾਲੇ, ਮੋਕੋ ਦੋਨੋ ਵਖਤ ਜਵਾਲੇ, ਖਾਟ ਮਾਂਗੋ ਚੌਪਾਈ, ਸਰਹਾਨਾ ਅਵਰ ਤੁਲਾਈ, ਉਪਰ ਕਉ ਮਾਂਗੋ ਖੀਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਕਰੈ ਜਨ ਥੀਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਤਉ ਹਰ ਜਾਣਿਆ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜੀ ਕੀ, ਘਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਬ ਦੇਖਾ ਤਬ ਗਾਵਾ, ਤਉ ਜਨ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾ, ਨਾਦ ਸਮਾਏ ਲੋਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਲੇ ਦੇਵਾ ਰਹਾਓ, ਜਹ ਚਿਲ ਮਿਲਕਾਰ ਦਸੰਤਾ, ਤੈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਬਜੰਤਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਨੀ, ਰਤਨ ਕਮਲ ਕੋਠਰੀ, ਚਮਕਾਰ ਬੀਜਲ ਤਹੀ, ਨੇਰੇ ਨਾਹੀ ਦੂਰ, ਨਿਜਾਤ ਮੈਂ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਜੈ ਅਨਹਤ ਸੂਰ ਉਜਿਆਰਾ, ਤਹ ਦੀਪਕ ਜਲੈ ਸ਼ਿਸ਼ਾਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਨਿਆ, ਜਨ ਨਾਮਾ ਸਹਿ ਸਮਾਨਿਆ, ਘਰ ਚੌਥਾ ਸੋਰਠ ਪਾੜ ਪੜੋਸਣ, ਪੁੱਛ ਲੇ ਨਾਮਾ, ਕਾ ਪੈ ਸ਼ਨ ਸ਼ਵਾਈ ਹੋ, ਤੋ ਪੈ ਦੁੱਗਣੀ ਮਜੂਰੀ ਦਹਾਓ, ਮੋਕੋ ਬੇਡੀ ਦਿਹੋ ਬਤਾਈ ਹੋ, ਰੀਬਾਈ ਬੇਡੀ ਦੇਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਦੇਖ ਬੇਡੀ ਰਹੋ ਸਮਾਈ, ਹਮਾਰੇ ਬੇਡੀ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰਾ ਰਹਾਓ, ਬੇਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮਜੂਰੀ ਮੰਗੈ, ਜੋ ਕੋ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਵਾਵੈ ਹੋ, ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਸਭੋ ਤੇ ਤੋਰੈ, ਤੋ ਆਪਨ ਬੇਡੀ ਆਵੈ ਹੋ, ਐਸੋ ਬੇਡੀ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਭ ਠਾਈ ਹੋ, ਗੂੰਗੈ ਮਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋ, ਬੇਡੀ ਕੇ ਗੁਣ ਸੁਣਦੀ ਬਾਈ, ਜਲਦ ਬਾਂਧ ਤੂੰ ਥਾਪਿਓ ਹੋ, ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਸੀ ਬਹੋਰੀ, ਲੰਕ ਭੀਖਣ ਆਪਿਓ ਹੋ, ਸੋਰਠ ਕਰ ਤੀਜਾ ਅੜਮੜਿਆ ਮੰਦਲ ਬਾਜੈ, ਬਿਨ ਸਾਵਣ ਕੰਨ ਹਰ ਗਾਜ।

वैद बनवारी अपने संतै लिहो बारी रहाओ। माथे पीर शरीर जलन है करक करे जे माही ऐसी बेदन उपज खरी पई वाका औखद नाही। हर का नाम अमृत जल निर्मल एहो औखद जग सारा गुर प्रसाद कह जन पीखन पावो मुख द्वारा। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया अनक जतन कर हृदय राखिया रतन ना छपै छपाया। हर गुण कहते कहन ना जाई जैसे गुंगे की मिठाई रहाओ रसना रमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई कहो पीखन दोए नैन संतोखे जैं देखा तैं सोई। तनासरी महला पहला कर पहला चौपदे एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। जियो डरत है अपना कैसे करी पुकार दुख विसारन सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नमा सदा सदा दातार रहाओ। अंदन साहेब सेवी है अंत छिडाए सोए सुन सुन मेरी कमनी पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा सदकुरबान जाओ रहाओ सरबंग साचा एक है दूजा नाही कोए। तां की सेवा सो करे जा को नदर करे तुदवाज प्यारे केव रहा सा वड़ियाई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए। जिसे आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहेब अपना अवर न जाचों कोए। नानक तांका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए साहेब तेरे ना मिटाओ बिंद बिंद चुख चुख होए रहाओ। तनासरी महला पहला हम आदमी हां एकदमी मोहलत मोत ना जाना नानक बिन मैं तसै सरेवो जाके जी पराना। अंधे जीवना विचार देख के ते के दिना रहाओ सास मां सब जियो तुम्हारा तू मैं खरा प्यारा। नानक सायर एव कहत है सच्चे परवतगारा जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डै गहना। नानक बिन मैं सो किश पाई है पुरब लिखे का लहना नाम खसम का चेतना किया कपटी कपट कमाना। जम द्वार जा पकड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही है नानक के सुनिया किश कही है भाल रहे हम रहन ना पाया जीवत अमर रही है। तनासरी महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तपह आओ जियड़ा बिललाए। सिरज सवारे साचा सोए तिस विसरिया चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म ना पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए रहाओ वखर नाम देखन कोई जाए। ना को चाखै

0: बहुते फेर पए किरपन कहो अब किस कृपा कीजै। हो दयालो दर्शन देहो अपना आपी ऐसी बस करी जै। भणत नानक परम पट खूले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर स्यो मन मानिया। तनासरी महला चौथा कर पहला चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। जो हर सेवै संत भगत तिनके सब पाप निवारी हामी ऊपर कृपा कर स्वामी रख संग तुम जो प्यारी। हर गुण कह न सको बनवारी हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी रहाओ। जन्म जन्म के लागे विख मोरचा लग संगत साध सवारी जो कंचर बै संतर तायो मलकाटी करते उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती जप हर हर हरे और तारी। हर हर हर औखद जग पूरा जप हर हर हों मैं मारी। हर हर अगमया गाद बोध अपरंपर पुरख्या पारी जन को कृपा करो जग जीवन जन नानक पै सवारी। तनासरी महला चौथा हर के संत जना हर जपयो तिनका दुख परम पाव भागी। अपनी सेवा आप कराई गुरमत अंतर जागी। हर कै नाम रता बैरागी हर हर कथा सुनी मन पाई गुरमत हर लिव लागी रहाओ। संत जना की जात हर स्वामी तुम ठाकर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी हम तैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक कीरे तुम वड पुरख वडागी। तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतगुर बानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ। ऐसा संत साध जिन पाया ते वड पुरख वडानी। तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उच्चे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखै बिखराते क्यों चालै गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावै आपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ। हर के संत सुनो जन पाई गुर सेवो बेग बेगाली। सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली।
1: यू आर ट्यून्ड टू रेडियो साई ग्लोबल हार्मनी bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
2: Now on Radio Sai we have a selection of Western classical music.